0: इसार के ठेंग कर तो सुन पोदो खावार दगे पोदो पां पाई के ओम सबा में जे पांग दु पां खा ही के तुने तो क्या तेरे छोर जोन दगे जब खा मुसु के जब तने के पा दे तेरे जब खा जो तेने छोर छोर सी नी तो छोग लोंग को जुल यर कब के ता सी जी तों दगे ता रुक पे के खावा छामा लोता तने या दोहा ला जोर रे के ना तेरे सी ता कांदा ने छोवा तुसु के जुरम के ना रंग सम लो कर थिंग सम मा मे जम दगे रंग के छों दले जा ओ मा के ना मुसु छोए का लो मो ये ता फामे का ले जा खेला रंग इन सम लो कर जे छो छो के वो अंदर रे दा सम ता तने जिन तो रंग के ता कांदा ने ये ने ही मसा ले जिन तो तने ले दा
1: Pela Shiwi Jingzhi Tangzhi, Penzhongi Shirim Kala, Mendoin Chanpa Nebanen Yobadam Yobanen Rimshi, Tugu Changdu Chindi, Shirim Mangzhogi Detam Sungyola, Lana Mebe Legi Pyu Yobari. Abardu Chobe Jalam Shardong Tubati, Menzhi Yoche Dutodo Pela Onre Tumni, Shirigi Menzhi Chagin Legi Tuba Gangshi. Rokyu Top Deuro Chinpe, Penzhongi Mirikagi Nimangi Detangla, Yesu Tu Yobari. Rokyu Top Deuro Chinpatang, Menzhi Yoche Tugu Changdu Chinpati, 加急行政满足的地当当，所以恰因离绝的，你不赶到退员们过，很多难关呢，想不起这部的事了。
0: 普通中中，那是中间了。三年去高六中大，把我们都冲出去，一人踏上当铺，钢筋给冲出门把鞋烫，钢筋给冲着把鞋硬起来。
2: 啊，培训为军队当的，那我进去，全员拿了呀的，既然在龙巴的呀，军队肯定进不来。
0: 他我是他老婆了，那培训为军队当的，龙我都是同学考虑，都做那日子跟那了，他俺让给他考，他考这个多少子了，他俺做高六去那那培训，你说我说，你从。 在你上面，我家就了他落差，落人谈话，你把上班一吧，他我把是普通做的对象了，我说过路了，兄弟呢，啊，落差那落了，兄弟呢，就他落看的在，你看的你，啊，这里也蛮着力跟，整整给点下，整整给他拦的，都是讲嘞，上老子过听上，上老子过他让老师说说不起啥的，都是给他一堆，他一跟他那落了，别急着上老公的。
2: 我说过了，落差我下学过呢，你嘛，你从这里来，他是把这三老师过的，现在他没查理给，他只做个人落差了，别给他这。这里我说嘛，厉害厉害，我那个你从家里那个落了，落差通的，你从短个落了，冲出面把钱给了。冲出面把钱的，都我说给面壁给厉害，他这里人他就马上冲出南州，大姐，这里下进有吧，就是给加大姐，但是冲出南满洲的给，啊给了，我没讲的。
0: 中途那满洲，对嘞嘞，现在我说他高六群众那，弟弟群众那，龙巴这里跟那了，对，你说你说他那卡托是第一，都做了嘛？他没休息了，我没讲，大人听嘛这是这是，加他钱着，天天参参，大钱等天天满洲嘞。他这里，啷个我嘛跟他，啷个确实嘞了，三八嘞嘞是嘛多的了，三八他一里米的高等着嘛，卡托卡托，他龙巴等着说说嘛他，他天天跟中柱给他，这做个下进中柱给刚硬忙活做嘞，伊呢他听上。 然后面看给搞了三老师搞那个，他我们家就搞了三老师搞那，像了我们家就有啊。对嘛子，他让重组那里做，我们家用土了嘛，他从那个泥土那下面看给拍，看都，把他重组那了，他摩擦东的天天是等我们家就给，他特别个便宜，他让个人多少了，便宜天天用的，他我呢就做个人呢，突然弄着这个药了，让你他没事。
2: 没事，他俺让做个没事做，他接了哇。他这个计划，这个他俺让做破壁，小松这些呢，他接俺们做啥做啥，他做啥下来，只有这没着啥。他我呢，三千多，他呢，三亚的，空军多，他呢，空亚的，那戴帽，那那咱不能戴帽，他让个每个大姐的，他每次他看三下看着，这兰州三年，主要有把那这四句上不这个药了，多几年的他我呢，身份拿了，我呢，也没咋为他几把是打给了。
0: 那这开始推没得呗？啊，我落差我是落差的，跟了老人出发，把他们招满去。
2: 哦。
0: 这里中学的、高中图书馆这里呢，跟了十六、十六些，天天，十六些在的，我是拿出成绩了，来日落差落差是，他落差他们做不来了。
2: 哦。
0: 天冷了，他学那天里落同新的，都我是碰上说落差新木冷了，他天天送的，开始过了他。
2: 한쇼 선데 텐데다 손된게 어 텐데 자네 본종 솔럽다 심목 다 다히 삐에